0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर यह बात कही। श्री मोदी ने कहा कि विकासशील देशों को अक्सर कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो कि अनुचित है। उन्होंने कहा कि भारत G20 का एकमात्र ऐसा देश है जिसने पेरिस में आयोजित COP21 शिखर सम्मेलन में की गई प्रतिबद्धताओं को समय से पूर्व ही सफलतापूर्वक पूरा किया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
1: प्रकृति और पर्यावरण के विषय पर सदियों तक भारत ने एक तरह से विश्व का मार्गदर्शन किया है। अपने उस वैचारिक कमिटमेंट को लेकर, अपने सांस्कृतिक अनुभवों को आधार बनाकर भारत अब आधुनिक क्लाइमेट चैलेंजेस के समाधान भी दे रहा है और साथ ही भारत मानवता के सामूहिक प्रयासों के लिए आह्वान भी कर रहा है।

0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का प्रमुख ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा पर रहा है और इसने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि पर्यावरण संबंधी न्यायाधिकरणों, नियामक तंत्रों और अनुपालन ढांचों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही देश में पृथ्वी संरक्षण का विचार मौजूद था। इस अवसर पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पर्यावरण के प्रति भारत का दृष्टिकोण उसकी प्राचीन सभ्यतागत विचारधारा में गहराई से निहित है, जो पृथ्वी को संपत्ति नहीं बल्कि एक साझा विरासत और पवित्र धरोहर मानता है। प्रधानमंत्री मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राज्यीय परिषद से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। इसके अंतर्गत पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के उपराज्यपालों को इन केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में परिषद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति होगी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक 3,57,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। भारत ने सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की अपनी मांग दोहराई है और कहा है कि वाणिज्यिक समुद्री आवाजाही भू राजनीतिक तनाव का निशाना नहीं बननी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने बृहस्पतिवार को सुरक्षा परिषद में कहा, समुद्री आवाजाही के अधिकारों पर जबरदस्ती, धमकियों, गैरकानूनी प्रतिबंधों या मनमाने दखल का अवसर नहीं पड़ना चाहिए। जापान के आइची नगोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। एशियाई खेल 8 से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has said that India's contribution to per capita carbon emissions is less than half of global average, inaugurating the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi today. Mr. Modi said that developing countries have often been unfairly held responsible for carbon emissions. He highlighted that India is the only country in the G20 that has successfully fulfilled the commitments made at the COP21 summit in Paris ahead of schedule. The Prime Minister said over the past 12 years, India has made extraordinary progress in every field related to the environment.
1: Carbon emission ki zimmedari galat tarike se vikasshil deshon par dali jati rahi hai. जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है, आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है। भारत ये तथ्य मजबूती के साथ वैश्विक मंचों पर रखता है।
2: Prime Minister Modi

0: आज की घर आंगन कार्यक्रम में मैं हूं आपकी प्यारी सी दोस्त अमित कमल और मैं हूं रेनू। तो कीजिए स्वीकार हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर यानी 100.1 MHz पर और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंस्टेंट चैनल पर भी यानी 366.3 मीटर अर्थात 819 KHz पर।
1: मुस्कुराते हुए चेहरे, बेफिक्र दिन और वो कागज की कश्ती, याद है रेणु वो बचपन जब बारिश होने पर हम स्कूल की छुट्टी की दुआ मांगा करते थे, जब बिजली कटने पर पूरा मोहल्ला छतों पर इकट्ठा हो जाता था और 5 रुपए की वो बर्फ की चुस्की दुनिया की सबसे बड़ी दौलत लगती थी।
0: बिल्कुल सही कहा अमित, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती थी वो। और आज की लेकिन भाग दौड़ भरी जिंदगी में लगता है हम कितने बड़े हो गए हैं, कौन सी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर ऐसी आ गई हैं जैसे कि हमारा मासूम सा बचपन कहीं पीछे से छूट सा गया है। लेकिन कार्यक्रम में आज वक्त की सुइयों को हम थोड़ा पीछे घुमाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के सवाल के सेगमेंट में हम आपसे बचपन से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे और वो सवाल क्या है अमित?
1: बिल्कुल रेनू, आज हम श्रोताओं के लिए सवाल लेकर आए हैं। दोस्तों आज का सवाल है, आपके बचपन का वो कौन सा खेल है जिसे आप आज भी मिस करते हैं? इसके लिए नोट कीजिए हमारा ईमेल आईडी fmgoldga@gmail.com।
0: बिल्कुल अमित, तो श्रोताओं को हमें इसी मेल आईडी पे लिखना होगा और हमें रहेगा उनके प्यारे प्यारे संदेशों का इंतजार। लेकिन कार्यक्रम में सुनते हैं सबसे पहले ये गीत।

0: लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत आपने सुना दोस्तों, जीने की राह फिल्म से।
1: और अमिता, देखो कविता केवल शब्दों की सुंदर सजावट नहीं बल्कि अपने समय, समाज और मनुष्य के अंतर मन को स्वर देने का माध्यम है। आज ऐसे ही एक संवेदनशील रचनाकार कवि कुंवर नारायण को उनकी जयंती पर हम उन्हें याद कर रहे हैं, जिनके शब्द केवल कविता नहीं बल्कि जीवन को समझने का माध्यम थे।
0: कुंवर नारायण की काव्य दृष्टि में मनुष्य सबसे महत्वपूर्ण है। उनकी रचनाओं में जीवन के सुख दुख, आशा निराशा, संघर्ष, जी जीविषा और रिश्तों की जटिलताएं बहुत गहराई के साथ अभिव्यक्त होती हैं। उनकी भाषा सहज है लेकिन उसके भीतर विचारों की गहरी परतें हैं।
1: बिल्कुल, वे जीवन को केवल देखते नहीं बल्कि समझते हैं, उसके विविध संदर्भों और अंतर्विरोधों के साथ। उनकी महत्वपूर्ण काव्य कृतियों में चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों और हाशिए का गवाह शामिल है, और है आत्मजयी, जिसमें विकटोपनिषद के कथानक को आधार बनाकर जीवन, मृत्यु, जिज्ञासा और आत्मिक स्वतंत्रता जैसे गहन प्रश्नों से संवाद करते हैं।
0: बाद में वाजश्रवा के बहाने में उन्होंने इसी संदर्भ को नए दृष्टिकोण से देखा है। इसमें वे मिथकीय प्रसंग के माध्यम से आज के मनुष्य, उसके रिश्तों और जीवन मूल्यों से जुड़े सवाल उठाते हैं।
1: वे अपनी कविताओं में भारतीय चिंतन परंपरा के उन सवालों को संबोधित करते हैं जो जीवन को सहजता, सफलता की ओर उन्मुख करती है, और इस प्रक्रिया में वे कविता को दर्शन के बराबर स्थापित करते हैं।
0: आज उनकी जयंती पर उन्हें याद करना केवल एक बड़े कवि को नमन करना नहीं है बल्कि उस विचारशील और मानवीय दृष्टि को नमन करना है जिसने हिंदी कविता को नई संवेदना, नई भाषा और नए अर्थ दिए।
1: आइए इस अवसर पर कुंवर नारायण की रचनाओं को फिर से पढ़ें, सुनें और महसूस करें। अब की बार लौटा तो बृहत्तर लौटूंगा, चेहरे पर लगाए नोकदार मूछे नहीं, कमर में बांधे लोहे की पूछे नहीं, जगह दूंगा साथ चल रहे लोगों को, तरेर कर देखूंगा उन्हें भूखी शेर की आंखों से, अब की बार लौटा तो मनुष्यतर लौटूंगा।

0: घर आंगन कार्यक्रम सुन रहे हैं आप एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रेणु देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे यानी कि आईआईटी बॉम्बे ने छात्र छात्राओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल दिए हैं। अक्सर आईआईटी का नाम सुनते ही हमारे मन में केवल कंप्यूटर साइंस या मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे विषयों का ख्याल आता है, लेकिन अब आईआईटी बॉम्बे अपने अलग अलग और आधुनिक कोर्स के लिए चर्चा में है। संस्थान ने एविएशन के शौकीनों के लिए फ्लाइट टेस्टिंग में एमए का स्पेशल कोर्स की शुरुआत की है
1: और आईआईटी बॉम्बे अब छात्रों को फ्लाइट टेस्टिंग में मास्टर्स डिग्री देगा। संस्थान ने भारतीय वायुसेना और आईआईटी मुंबई के साथ मिलकर एक नई पहल शुरू की है। दोनों संस्थानों की ओर से एक एग्रीमेंट साइन किया गया है जिसके तहत फ्लाइट टेस्ट क्रू के लिए मास्टर डिग्री प्रोग्राम तैयार किया जाएगा और इस प्रोग्राम में मुख्य रूप से टेस्ट पायलट और फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर्स शामिल होंगे।
0: आसमान छूने की चाहत रखने वालों के लिए आईआईटी बॉम्बे का एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग अब छात्र छात्राओं को विमानों और एयरोस्पेस प्रणालियों की टेस्टिंग की बारीकियां सिखा रहा है। फ्लाइट टेस्टिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें किसी भी नए विमान, हेलीकॉप्टर या ड्रोन को हवा में उड़ाने से पहले उसकी सुरक्षा मानकों, प्रदर्शन और तकनीकी पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है।
1: और अमित, इसके लिए उम्मीदवार के पास एयरोस्पेस इंजीनियरिंग या संबंधित इंजीनियरिंग शाखा में वैध बीटेक, बीई या समकक्ष डिग्री होनी जरूरी है
0: और इस कोर्स के माध्यम से छात्र छात्राओं को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सिमुलेशन तकनीक और एरोडायनेमिक्स का गहरा अनुभव दिया जाएगा। जो छात्र छात्राएं एविएशन इंडस्ट्री, रक्षा अनुसंधान यानी कि डीआरडीओ, इसरो या प्राइवेट विमानन कंपनियों में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए कोर्स बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आप संस्था की वेबसाइट चेक कर सकते हैं।

0: छोटी सी बात फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और यशुदास के आवाज में। घर आंगन कार्यक्रम चल रहा है और अब क्या बताने वाली हो रेणु?
1: हाँ अमित, बात करते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की। ये शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी पटरी और सड़क किनारे सामान बेचने वाले विक्रेताओं को बिना किसी गारंटी के आसान ऋण उपलब्ध कराने वाली केंद्र सरकार की एक विशेष योजना है, जो छोटे कारोबारियों और उनके कारोबार को मजबूत बनाने और आगे बढ़ाने में मदद करती है।
0: इसमें पहला ऋण दोस्तों 10,000 एक वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है और समय पर पहला ऋण चुकाने के बाद दूसरा ऋण 20,000 से 25,000 तक और फिर तीसरा ऋण भी मिलता है अगर आपने दूसरा ऋण समय पर चुका दिया हो तो।
1: और ये ऋण मिलता है 50,000 रुपए तक का और इस ऋण का समय पर भुगतान करने पर आपको 7% की दर से ब्याज सब्सिडी भी दी जाती है।
0: डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सालाना 1200 तक का कैशबैक इंसेंटिव भी मिलता है। इसकी सबसे खास बात ये है कि इसमें किसी भी तरह की गारंटी या जमानत की जरूरत नहीं होती है।
1: आवेदक शहरी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क पर सामान बेचने का काम करता हो, ये योजना मुख्य रूप से रेहड़ी पटरी ठेला चलाने वाले या स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है जिनके पास लोकल निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त वेंडिंग सर्टिफिकेट या आईडी है।
0: तो जिनके पास वेंडिंग से

0: ये जुड़ा हुआ वैध प्रमाण पत्र है, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए अपने नगर निकाय, बैंक या आधिकारिक पीएम स्वनिधि पोर्टल से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
1: बिल्कुल अमित, और इसी के साथ हम एक बार क्यों ना अपने श्रोताओं को जो सवाल हमने उनसे पूछा था उसके बारे में भी एक बार उनसे फिर से उन्हें बता देते हैं कि हमारा सवाल क्या है।
0: आज का हमारा सवाल है दोस्तों, आपके बचपन का वो कौन सा खेल है जिसे आप आज भी मिस करते हैं। इसके लिए नोट कीजिए हमारा ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी बताएंगी रेणु।
1: ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो हमें आपके प्यारे प्यारे संदेशों और जवाबों का इंतजार है।

0: ना खुदा फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में। घर आंगन कार्यक्रम चल रहा है और आज की सभा में मैं हूँ आपके साथ अमित कमल और मेरे
1: और
0: साथ
1: मैं हूँ रेनू। तो अमित, अब बात करते हैं मिशन शक्ति सेट के लिए चुनी गई आंध्र प्रदेश की 14 वर्षीय छात्रा केंद्रुला जेसी की, जिन्हें ऑल गर्ल्स ग्लोबल लूनर क्यूबसेट मिशन मिशन शक्ति सेट के लिए चुना गया है। ये मिशन दुनिया का पहला ऐसा अंतरिक्ष मिशन है जिसे पूरी तरह से छात्राओं द्वारा तैयार किया जा रहा है और इसका नेतृत्व चेन्नई की संस्था स्पेस किड्स इंडिया कर रही है, जिसमें इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सहयोगी है।
0: इस मिशन का उद्देश्य है विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में महिलाओं और युवा लड़कियों की भागीदारी को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना। इसी मिशन के लिए दुनिया भर के 108 देशों की लगभग 12,000 छात्राओं में से चुनी गई कंदुला जेसी अपने राज्य आंध्र प्रदेश की एकमात्र प्रतिनिधि हैं,
1: जो धवलेश्वरम के एक सरकारी स्कूल में कक्षा 10 की छात्रा हैं और इनके पिता एक बढ़ई का काम करते थे अमिता, लेकिन इन्होंने अपनी पारिवारिक परिस्थितियों और सीमित संसाधनों को इन्होंने कभी भी अपनी सफलता की राह में नहीं आने दिया।
0: इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए जेसी ने अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के साथ साथ सैटेलाइट सिस्टम, स्पेस टेक्नोलॉजी और थर्मोडायनेमिक्स जैसे विषयों पर 550 से अधिक ऑनलाइन सत्र और 21 मॉड्यूल्स पूरे किए हैं।
1: और पता है अमिता, जब जेसी को इस मिशन के बारे में पता चला तो उन्होंने न केवल खुद आवेदन किया बल्कि अपने स्कूल की 8 अन्य छात्राओं को भी इस प्रोग्राम में रजिस्टर करने के लिए प्रेरित किया। तो आप भी इस मिशन से जुड़िए। ये ऑल इंडिया गर्ल्स मिशन है और जिसमें केवल लड़कियां ही आवेदन कर सकती हैं, यानी लड़कियों के लिए ये है एक सुनहरा अवसर।

0: आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज में ये गीत आपने सुना जीवा फिल्म से, और घर आंगन कार्यक्रम सुन रहे हैं आप।
1: और अमित, देखो ना, हम लोग ने जो सवाल पूछा था अपने श्रोताओं से, तो जवाब आने, मेल्स आने शुरू हो गए हैं। तो इसमें से एक मेल जो मेरे पास है, ये सामने खुला हुआ है, इसको पढ़ते हैं पहले। चरण दास लिख रहे हैं ये, तो चौधरी वास हरियाणा से। इनके साथ राजू अग्रवाल के शो प्रियांशी भी हैं, और ये लिख रहे हैं कि हमारे जमाने में बहुत अच्छे खेल होते थे, लुका छिपी, तालाब में हथेली से पानी उछालकर, मिट्टी रैंप और दूल्हा बनाते थे। तो इस तरह से ये काफी बचपन में खेल खेलते थे, गली मोहल्लों में नाचते थे, शादी में।
0: तो इन्होंने पूरा बचपन याद कर लिया है,
1: और इन्होंने बहुत अपने बचपन की याद तो दिलाई ही, और हम लोगों को भी अपने बचपन की याद
0: आ गई। और एक और मैसेज आया है हमारे पास, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनी पद से लिख रहे हैं। ये लिख रहे हैं, आदरणीय रेनू और अमिता जी, आपको सादर प्रणाम। कार्यक्रम सुन रहे हैं घर आंगन। इंडोर गेम्स में इन्हें कैरम, लूडो, चिड़िया उड़, तोता उड़ अच्छा लगता था, और आउटडोर गेम्स की बात करें तो इन्हें पिट्ठू, गिल्ली डंडा, कंचे खेलना ये मिस करते हैं। तो बहुत ही सवाल एक बार फिर से दोहरा देते हैं।
1: नहीं, सवाल तो हम दोहरा ही देंगे, लेकिन इसको देखो ना, ये कुछ मैसेज और भी हमारे सामने। ये मैसेज है इनका, उत्तम सिंह का, ये गुरुजी के नाम से इन्होंने लिखा है। जुनेजा, भूपेंद्र जुनेजा, सीमा जुनेजा और अनमोल जुनेजा, तो और सभा गुप्ता भी, तो ये लोग भी लिख रहे हैं और कार्यक्रम की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने सवाल से संबंधित तो कोई जानकारी नहीं, जवाब नहीं दिया है। तो भाई सवाल एक बार हम फिर से अपने श्रोताओं को बता देते हैं कि आज आपको बताना है कि बचपन में आप कौन से खेल खेलते थे, और कौन सा खेल आपको आज तक याद है या मिस करते हैं। आप भले उन खेल को खेल ना पाएं, लेकिन जब किसी को खेलते हुए देखते हैं और कहीं आपके बच्चे या घर में कोई खेलता है, तो याद आ जाती है आपको भी कि आप भी ये बहुत अच्छे से खेलते थे।
0: इसके लिए आप नोट कीजिए हमारा मेल आईडी, हमारा मेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो हमें रहेगा आपके प्यारे प्यारे संदेशों का इंतजार।

0: अभी आपने सुना फिल्म घर से लता मंगेशकर को, ये गीत उनकी आवाज में।
1: रेणु, कल से स्वच्छता ही सेवा माह मनाया जा रहा है और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों में स्वच्छता के प्रति व्यवहार में बदलाव लाना और इसे एक जन आंदोलन बनाना है।
0: बिल्कुल अमित, और इस माह को मनाने का उद्देश्य देश के हर नागरिक को स्वच्छता से जोड़ना और ये एहसास कराना कि साफ सफाई केवल सरकार का ही नहीं बल्कि सबकी जिम्मेदारी है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि देखो ना, जब तक लोग खुद नहीं जुड़ते, यानी जन आंदोलन, जब तक कोई नियम या कानून नहीं बनता तब तक वो सफल नहीं हो सकता। तो सफलता तो इसी बात पर निर्भर करती है कि हम अपनी जिम्मेदारी को कितनी अच्छी तरह निभाते हैं।
1: दोस्तों, इसके द्वारा लोगों को कचरे का पृथक्करण, रिसाइकलिंग और कचरा मुक्त वातावरण को बढ़ावा देना, सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, स्कूलों और पर्यटक स्थलों को साफ सुथरा और हरा भरा रखना सिखाना है।
0: बिल्कुल अमित, और इसके साथ ही इसके अंतर्गत शहरों को कचरा मुक्त बनाना, वैज्ञानिक तरीकों से कचरा प्रबंधन करना और स्वच्छता सर्वेक्षण के जरिए नगर निकायों में सुधार लाना इसका मुख्य लक्ष्य है। ये देशव्यापी विशेष अभियान जन भागीदारी, श्रमदान और सार्वजनिक स्थलों की सफाई पर केंद्रित है।
2: तमन्ना है

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत आपने सुना हीरा फिल्म से, और गणपति बप्पा मोरिया की गूंज से पूरा शहर सराबोर है। रेणु बप्पा हमारे घर आ चुके हैं तो उनके स्वागत में कुछ मीठा और खास तो बनना ही चाहिए, और जब बात भोग की हो तो सबसे पहले नाम आता है
1: मोदक का।
0: तो कैसे बनाएंगे रेणु?
1: बिल्कुल, तो मोदक बनाने के लिए देखो ना, एक पैन में एक चम्मच घी गरम करें, उसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल और गुड़ डालें, इसमें धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक कि गुड़ पूरी तरह से पिघल ना जाए। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो ध्यान रहे कि इसमें सूखा नहीं करना है इसको, मतलब थोड़ा सा लटपटा ही रहे, तभी इसमें इलायची पाउडर और मेवे मिलाकर गैस बंद कर दें।
0: और आपकी खुशबूदार स्टफिंग तैयार है, और एक बर्तन में एक कप पानी, एक चम्मच घी और नमक डालकर उबालें। जैसे ही पानी उबलने लगे गैस धीमी करें और चावल का आटा डालकर लगातार चलाते हुए आटा गूंदें, और 5 मिनट बाद इस आटे को एक परात में निकालें और गर्म रहते हुए ही हाथ में थोड़ा सा पानी या घी लगाकर अच्छे से गूंद लें। आपका आटा तैयार है।
1: बिल्कुल, अब आटा तैयार होने के बाद उसकी छोटी छोटी लोइयां बना लें। एक लोई की उंगलियों की मदद से कटोरी जैसा आकार दें। इसके लिए किनारा थोड़ा थोड़ा जो है उसमें उंगलियों में कलियां जैसी बना लें, और फिर बीच में एक चम्मच नारियल गुड़ की जो स्टफिंग आपने तैयार की थी वो उसमें डालें, और फिर मोदक का एक खूबसूरत आकार देकर और इसको आप तैयार कर सकते हैं। चाहे तो आप सांचे का भी प्रयोग कर सकते हैं।
0: अब आखिरी और सबसे जरूरी काम, एक स्टीमर या इडली पात्र में पानी गर्म करें और स्टीमर की प्लेट पर थोड़ा सा घी लगाएं और केले का पत्ता भी आप रख सकते हैं। इस पर मोदक रखें और ढककर 10 से 12 मिनट तक भाप दीजिए। लीजिए, तैयार है आपके स्टीम मोदक।

0: ये गीत आप सुन रहे हैं आशा जी और किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म है द ग्रेट गैम्बलर और स्टूडियो की घड़ी हमें इशारा कर रही है रेणु, विदा लेने का वक्त हो चला है।
1: तो मुझे यानी रेणु को
0: और मुझे यानी अमित कमल को दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।

kangen. आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत बनाने में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है।
1: आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का। इसमें आप जैसे युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार में रहते हुए आपको हर वो निर्णय लेना है जो विकसित भारत के अभियान को, आत्मनिर्भर भारत के अभियान को निरंतर सशक्त करे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ये रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
1: प्रकृति और पर्यावरण के विषय पर सदियों तक भारत ने एक तरह से विश्व का मार्गदर्शन किया है। अपने उस वैचारिक कमिटमेंट को लेकर, अपने सांस्कृतिक अनुभवों को आधार बनाकर भारत अब आधुनिक क्लाइमेट चैलेंजेस के समाधान भी दे रहा है, और साथ ही भारत मानवता के सामूहिक प्रयासों के लिए आह्वान भी कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का प्रमुख ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा पर रहा है और इसने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस, CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल

0: 9 इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
1: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि पर्यावरण संबंधी न्यायाधिकरणों, नियामक तंत्रों और अनुपालन ढांचों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही देश में पृथ्वी संरक्षण का विचार मौजूद था। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पर्यावरण के प्रति भारत का दृष्टिकोण उसकी प्राचीन सभ्यतागत विचारधारा की गहराई में निहित है, जो पृथ्वी को संपत्ति नहीं बल्कि एक साझा विरासत और पवित्र धरोहर मानता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं। नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले जाने वाला ये वायुसेना का 9वां विमान था। पिछले महीने नेपाल में भीषण बाढ़ आई थी, जिससे जान माल का काफी नुकसान हुआ। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल को सहायता करना जारी रखेगा। भारत ने सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की अपनी मांग दोहराई है और कहा है कि वाणिज्यिक समुद्री आवाजाही भू राजनीतिक तनाव का निशाना नहीं बननी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने बृहस्पतिवार को परिषद में कहा कि समुद्री आवाजाही के अधिकारों पर जबरदस्ती, धमकियों, गैरकानूनी प्रतिबंधों का मनमाने दखल का असर नहीं पड़ना चाहिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi said that free trade agreements are opening new doors of opportunity for the country's youth. He said such trade agreements paved the way for new partnerships and markets for countries' entrepreneurs and create new career possibilities for the youth. He said the talent and skills of country's youth have won the trust of the entire world.
0: आज भारत तेजी से ग्रो करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में भारत की ग्रोथ रेट 7.8% रही है। इन्वेस्टमेंट में करीब 12% की बढ़ोतरी हुई है। रेटिंग एजेंसियां भारत की रेटिंग सुधार रही है और ये प्रगति ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया अनेक अनिश्चितताओं से गुजर रही है। भारत की इस ग्रोथ के पीछे बीते वर्षों के रिफॉर्म्स का बड़ा योगदान है।
2: ऑन द ओकेजन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह सेड An assessment of employment generation and recruitment through Rozgar Mela has shown that there has been a significant increase in government appointments along with a greater transparency. Prime Minister Narendra Modi has said that India's contribution to per capita carbon emissions is less than half of global average, inaugurating the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi today. Mr. Modi highlighted that India is the only country in the G20 that has successfully fulfilled the commitments made at the conference of the parties 21 summit in Paris ahead of schedule. The Prime Minister said, over the past 12 years, India has made extraordinary progress in every field related to the environment.
0: Carbon emission ki zimmedari galat tarike se vikasshil deshon par dali jati rahi hai. जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है, आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है।

0: भारत ये तथ्य मजबूती के साथ वैश्विक मंचों पर रखता है.
1: On the occasion, Chief Justice of India Suryakant said the idea of preserving the earth existed in the country much before the emergence of environmental tribunals, regulatory mechanisms and compliance frameworks. India has dispatched another 11 tons of relief material to Nepal, including medicines, forensic supplies, tents, hygiene kits, sleeping bags and other essential supplies. This is the ninth Indian Air Force plane carrying relief material to support Nepal's recovery. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said, India continues to support Nepal's recovery. Meanwhile, Nepal Prime Minister Balendra Shah today said that disaster early warning systems will be implemented on the highest priority following devastating floods in the Bhote Koshi and Trishuli river basins that caused extensive loss of lives and infrastructure damage. The United Nations experts have warned Pakistan against forcibly deporting Afghan refugees. The experts called for authorities to assess whether individuals face risks of persecution, torture or other serious human rights violations before their removal. The experts also raised concerns over a directive requiring medical and dental institutions in Pakistan to remove Afghan students. The IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands today. The weather agency predicted heavy rainfall over East Rajasthan, Odisha, Nagaland, Manipur, Mizoram, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Kerala and Mahe. Assam is remembering iconic singer, composer and cultural figure Zubin Garg on his first death anniversary today. The state has also been observing a three-day Zubin Divas since September 17th. And that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर. श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त आपके साथ सुनिधि गुप्ता. और आप सुन रहे हैं हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम जो कि आप सभी को बहुत पसंद आता है, एक ही फिल्म से. दोस्तों हिंदी सिनेमा की दुनिया में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनका जादू सिर्फ उनके गीत संगीत या सितारों की लोकप्रियता तक सीमित नहीं रहता. कुछ फिल्में अपने कथानक, रहस्य और रोमांच के कारण दर्शकों को शुरू से आखिर तक बांधे रखती हैं. आज की हमारी फिल्म भी कुछ ऐसी ही है. आज हम बात करेंगे साल 1965 में आई एक रोमांचक और रहस्य से भरपूर फिल्म 12 o'clock. जी हाँ, नाम सुनते ही आपके मन में शायद घड़ी की सुइयां घूमने लगी होंगी. रात के 12 बजने वाले हों, सन्नाटा हो और तभी कोई ऐसा रहस्य सामने आ जाए जिसका जवाब पूरी दुनिया को बदल दे. तो आइए आज के एक ही फिल्म से कार्यक्रम में जाने इस दिलचस्प फिल्म की कहानी, इसके कलाकार, संगीत और उन तमाम बातों के बारे में जो इस फिल्म को यादगार बनाती है. मैं हूं आपके साथ सुनिधि और आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से. दोस्तों 12 o'clock सिर्फ एक रहस्य और अपराध की कहानी नहीं है, इस फिल्म में रोमांस और संगीत के लिए भरपूर जगह है. फिल्म के संगीतकार थे ओपी नैयर, जिनका संगीत अपने खास अंदाज, लय और ठेठ भारतीय रंग के लिए जाना जाता था. और जब ओपी नैयर संगीत का हो और जब ओपी नैयर का संगीत हो तो गीतों में एक अलग ही चंचलता और ऊर्जा महसूस होती है. तो आइए फिल्म का एक बेहद लोकप्रिय गीत है, सुन लेते हैं कैसा जादू बालम तूने डारा.

दोस्तों, ओपी नैयर की खासियत ये थी कि उनके संगीत में भारतीय धुनों के साथ साथ पश्चिमी वाद्य संगीत और लय का भी खूबसूरत इस्तेमाल दिखाई देता था। उनके संगीत की यही पहचान इस फिल्म में भी सुनाई देती है। तो अब बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी की। कहानी शुरू होती है एक ऐसे अपराध से जो पूरी फिल्म के रहस्य की नींव रखता है। फिल्म में एक हत्या होती है और परिस्थितियां इस तरह सामने आती हैं कि शक की सुई एक महिला की ओर घूम जाती है। मामला अदालत तक पहुंचता है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या जिस व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया गया वही वास्तव में हत्यारा है, या फिर इस अपराध के पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो अभी सामने नहीं आया। यही सवाल दर्शकों को फिल्म के साथ जोड़े रखता है। फिल्म के प्रमुख कलाकारों में एक बेहद महत्वपूर्ण नाम है, गुरुदत्त। गुरुदत्त सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि भारतीय सिनेमा के अत्यंत महत्वपूर्ण फिल्मकारों में भी उनका नाम लिया जाता है। उनकी फिल्मों में कहानी कहने का अंदाज, कैमरा, प्रकाश और भावनाओं की अभिव्यक्ति अपने आप में विशिष्ट थी। 12 o'clock में भी उनका अभिनय कहानी को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीदा रहमान की बात करें तो वहीदा रहमान का परिचय अब बात उस अभिनेत्री की करेंगे जिनकी खूबसूरती के साथ साथ उनकी अभिनय क्षमता ने हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई। वहीदा रहमान और गुरुदत्त की जोड़ी हिंदी सिनेमा की चर्चित जोड़ियों में रही है। दोनों ने कई यादगार फिल्मों में साथ साथ काम किया और उनके अभिनय में भावनाओं की गहराई दर्शकों को हमेशा से अपनी तरफ खींचती रही। 12 o'clock में भी दोनों की मौजूदगी फिल्म के आकर्षण को बढ़ाती है। और फिल्म में संगीत दिया था, जैसा कि मैंने पहले बताया, ओपी नैयर ने। ओपी नैयर का नाम आते ही हमारे सामने एक ऐसा संगीतकार उभरता है जिनकी धुनों में एक अलग तरह की रवानगी रहती है। उनके गीतों में ताल, गति और ऑर्केस्ट्रन की विशेष भूमिका होती है। फिल्म 12 o'clock में गीत कहानी के भावनात्मक पक्ष को भी सामने लाते हैं। इसके गीत इस तरह से लिखे हुए और ढले हुए हैं कि खुद ब खुद फिल्म की कहानी आपके सामने रखते हैं। तो आइए इसी बात पर सुन लेते हैं इस फिल्म का दूसरा गीत।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंफ्रेस चैनल और अपना पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुनिधि। दोस्तों 1960 का दशक हिंदी फिल्म संगीत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दौर था। इस दौर में शंकर जयकिशन, एसडी बर्मन, मदन मोहन, रोशन, ओपी नैयर और कई अन्य संगीतकार अपनी अलग अलग संगीत शैलियों से हिंदी सिनेमा को मजबूत कर रहे थे। अब बात हमारे दिमाग में ये आती है कि इस फिल्म का नाम 12 o'clock ही क्यों चुना गया। दोस्तों फिल्म का नाम ही अपने आप में एक उत्सुकता पैदा कर देता है, 12 बजे का समय, लेकिन घड़ी में 12 बजना अपने आप में कोई असाधारण घटना नहीं है। फिर इस फिल्म का इस फिल्म की कहानी से क्या संबंध है, यही वह सवाल है जो फिल्म के रहस्य को और भी गहरा कर देता है। तो हम बात करते रहेंगे इस फिल्म की 12 o'clock की, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: Work from home?

0: सैलरी बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: रात का समय, सन्नाटा, अपराध और एक ऐसा मामला जिसमें सच और भ्रम के बीच अंतर करना आसान नहीं, यही वातावरण फिल्म को एक खास रहस्यपूर्ण रंग देता है। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, घटनाएं जटिल होती जाती हैं। एक तरफ है अपराध का मामला और दूसरी तरफ है उसे सुलझाने की कोशिश। हर सुराग एक नया सवाल खड़ा करता है। जिस बात को सच समझा जाता है उसके पीछे एक और कहानी निकल आती है और दर्शक लगातार सोचते रहते हैं कि आखिर असली सच है क्या। यही रहस्य 12 o'clock की कहानी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। चलिए हम इस फिल्म की बात करते रहेंगे, लेकिन माहौल को थोड़ा रोमांटिक भी बनाते हैं। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और अभी आपने गीता दत्त की आवाज में सुना अरे तौबा फिल्म 12 o'clock से। दोस्तों आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं ipradiodelhi@gmail.com पर भी भेज सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है और आप और कौन सी फिल्में इस कार्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे 12 o'clock का ये गीत, और दोस्तों यही तो हिंदी फिल्मों की खूबसूरती है। एक ही फिल्म में जहां रहस्य और अपराध का तनाव हो सकता है, वहीं उसी कहानी में प्रेम भावनाएं और संगीत भी अपनी जगह बना लेते हैं। तो आइए अब हम सुनते हैं इस फिल्म का बहुत ही एक सुंदर सा गीत मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज में।

दोस्तों कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो अपनी आंखों से ही अभिनय करते हैं और दर्शक उनके साथ इस तरह जुड़ जाते हैं कि बस उन्हें वही जोड़ी हर पर्दे पर चाहिए, हर फिल्म में चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं गुरुदत्त और वहीदा रहमान की जोड़ी की। गुरुदत्त और वहीदा रहमान की जोड़ी को हिंदी सिनेमा में विशेष स्थान मिला। इन दोनों की फिल्मों में भावनात्मक गहराई दिखाई देती है। गुरुदत्त की फिल्मों की दृश्य भाषा और वहीदा रहमान की सहज अभिनय शैली का मेल दर्शकों को हमेशा से प्रभावित करता रहा है। 12 o'clock में भी इस जोड़ी के साथ जुड़ी महत्वपूर्ण फिल्मों में शामिल है। इस फिल्म में और भी अन्य कलाकार हैं, लेकिन आइए अब हम सुनते हैं आगे बढ़ने से पहले इस फिल्म का एक और गीत।

0: रतियां बिताना मुश्किल हो गया, रतियां बिताना मुश्किल।
1: दोस्तों, अब कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ती है। जांच आगे बढ़ती है, एक एक करके नए तथ्य सामने आते हैं, लेकिन हर नए तथ्य के साथ रहस्य और गहरा होता जाता है। जिस व्यक्ति पर शक किया जा रहा है उसके पक्ष में भी कुछ बातें सामने आने लगती हैं और अपराध की वास्तविकता को समझना और भी कठिन हो जाता है। यहीं से फिल्म दर्शकों को अपने अंतिम रहस्य की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, आज हमने बात की फिल्म 12 o'clock की। घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं इस कार्यक्रम के समापन की ओर जाने के लिए, लेकिन चलते चलते हम आपको छोड़ चलते हैं इस फिल्म के एक और बेहद खूबसूरत गीत के साथ, जो कि मोहम्मद रफी की आवाज में है। आइए सुन लेते हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही 20वें रोजगार मेले दौरान वख-वख सरकारी अदारों में नवे नियुक्त हुए नौजवानों 51,000 तो वध नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री मोदी ने आज नवी दिल्ली में वातावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय बारे एक अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए कहा कि प्रति व्यक्ति कार्बन निकासी में भारत का योगदान विश्व औसत के अद्धे तो भी घट है। भारत में कामकाजी औरतों की हिस्सेदारी में तेजी से वाधा हुआ है। भारत ने हड़ प्रभावित नेपाल को 11 टन राहत समगरी की एक होर खेप भेजी है। 20वीं एशियाई खेडां अज तो जापान के आईची नागोया में शुरू हो रही हैं। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 20ਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 51,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ।
1: ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ 51,000 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਯੁਵਾਓਂ ਕੋ सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: इस मौके अमले जनतक शिकायतां ते पेंशन राज मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि रोजगार मेले राही रोजगार सिरजन अते भर्ती दे मुलांकण तो पता लगता है कि सरकारी नियुक्तियां विच काफी वाधा होया है। मंत्री ने कहा कि भर्ती प्रणाली नूं बेहतर बनाउण लई कई पहलकदमियां कीतियां गईआं ने। देश भर विच 45 थावां ते 20वां रोजगार मेला आयोजित कीता गया। नवें भर्ती हुए उम्मीदवार भारत सरकार दे वख-वख मंत्रालयां ते विभागां विच शामिल होणगे जिन्हां विच वित्त रेलवे गृह सेहत अते परिवार भलाई अते रक्षा मंत्रालय आदि शामिल ने। 20वें रोजगार मेले नाल हुण तक कुल मिला के लगभग 12,75,000 नौजवानां नूं

0: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं हबीब रहमान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आजादाना तिजारती मुआहदे मुल्क के नौजवानों के लिए नए इम्कान पैदा कर रहे हैं। उन्होंने 20वीं रोजगार मेले के दौरान नौजवानों में 51,000 से ज्यादा तकरीरनामे तकसीम किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कार्बन इखराज में भारत का फीकद हिस्सा दुनिया के औसत हिस्से के निस्फ से भी कम है। उन्होंने वाजे किया कि भारत G20 का ऐसा वाहिद मुल्क है जिसने COP21 समिट के दौरान किए गए वादों को वक्त से पहले पूरा किया है। मरकजी हुकूमत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2M के तहत ज्यादातर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 34,000 देही नौजवानों को तरबियत देगी। भारत ने अद्वियात और फोरेंसिक सप्लाईज समेत नेपाल को 11 टन राहती साजो सामान की खेप रवाना की है। अक्वामे मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को अफगान पनाह गुजीनों को जबरी तौर पर मुल्क बदर करने से मुतालिक खबरदार किया है। माहिरीन ने भी पाकिस्तान के तिब्बी इदारों से अफगान तलबा को निकालने से मुतालिक हुक्मनामे पर तशवीश का इजहार किया है। मशहूर गुलकार, कंपोजर और सकाफती शख्सियत जुबिन गर्ग को उनकी पहली बरसी पर आसाम में याद किया जा रहा है। और एशियाई खेल 2026 का 20वां एडिशन आज दोपहर जापान में शुरू होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20वें रोजगार मेले में हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में नए मुकर्रर किए नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकर्रनामे तकसीम किए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आजादाना तिजारती मुआहदों से मुल्क के नौजवानों के लिए नए मौके पैदा हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह के मुआहदे मुल्क के सनअतकारों के लिए नई शराकतदारियों और बाजारों की राह हमवार करते हैं और नौजवानों के लिए रोजगार के नए इम्कान तश्कील देते हैं। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के नौजवानों के टैलेंट और उनकी सलाहियतों ने पूरी दुनिया का भरोसा जीता है।
1: आज भारत तेजी से ग्रो करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में भारत की ग्रोथ रेट 7.8% रही है। इन्वेस्टमेंट में करीब 12%

0: प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, रेटिंग एजेंसियां भारत की रेटिंग सुधार रही है और ये प्रगति ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया अनेक अनिश्चितताओं से गुजर रही है। भारत की इस ग्रोथ के पीछे बीते वर्षों के रिफॉर्म्स का बड़ा योगदान है।
1: इस मौके पर अमले, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर मंदकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि रोजगार मेले के जरिए रोजगार की तश्कील और तकरूरी

0: करने से पहले इस बात का पता लगाएं कि क्या मुल्क बदर किए जाने वाले अफराद को जुल्म जबर तशद्दुद या दीगर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों जैसे खतरात का सामना है। आज मायनाज गुलोकार मौसीकार और सकाफती अहमियत के हामिल जुबीन गर्ग की पहली बरसी के मौके पर उनको याद किया जा रहा है। लाखों लोग जुबीन गर्ग की मौसीकी के दिलदादा हैं। आज रियासत भर में मुख्तलिफ तकरीबात और प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। 20वें एशियन गेम्स की शानदार इफ्तिताही तकरीब आज जापान के आइची नागोया के पालोमा मिजोहो स्टेडियम में भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे मुनाकिद होगी। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज़ादाना तिजारती मुआहदे मुल्क के नौजवानों के लिए नए इम्कानात पैदा कर रहे हैं। उन्होंने 20वें रोजगार मेले के दौरान नौजवानों में 51,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम किए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कार्बन इखराज में भारत का फीसद हिस्सा दुनिया के औसत हिस्से के निस्फ से भी कम है। उन्होंने वाज़ह किया कि भारत G20 का ऐसा वाहिद मुल्क है जिसने COP21 समिट के दौरान किए गए वादों को वक्त से पहले पूरा किया। मरकजी हुकूमत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2M के तहत ज्यादातर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 34,000 देही नौजवानों को तरबियत देगी और एशियाई खेल 2026 का 20वां एडिशन आज दोपहर जापान में शुरू होगा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says free trade agreements are opening new doors of opportunities for the country's youth. Distributes more than 51,000 appointment letters at 20th Rozgar Mela. Prime Minister Modi says India's contribution to per capita carbon emissions is less than half of global average. Highlights, India is the only country in G20 that fulfilled commitments made at COP21 ahead of schedule. Government to train 34,000 rural youth under Deendayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0 across most states and union territories. India dispatches 11 tons of fresh relief material to flash flood recovering Nepal. UN warns Pakistan against forcibly deporting Afghan refugees. Also raises concerns over a directive requiring medical institutions to remove Afghan students. Assam remembers iconic singer, composer and cultural figure Zubeen Garg on his first death anniversary, and 20th Asian Games to begin in Japan this afternoon. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future.
2: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
1: He said the government's endeavor has also been to ensure that the education and skills of the country's youth keep pace with the needs of the changing economy. Prime Minister Modi said the government is also working to rapidly expand employment opportunities in the private sector. He said with this objective, the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana has been launched with an outlay of around 1 lakh crore. Prime Minister Modi said that India has signed free trade agreements with nearly 40 countries in the past few years, which is opening new doors of opportunity for the country's youth.
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं, नए मार्केट्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे

0: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं जिससे देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं।
0: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में करीब आधे टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में है। श्री मोदी ने कहा कि गांव, कस्बों और छोटे शहरों के युवा देश की नई अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार सृजन और भर्ती के आकलन से पता चला है कि सरकारी नियुक्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है। 20वां रोजगार मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। नवनियुक्त युवा वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रक्षा सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज केरलम के एर्नाकुलम में 2 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेलों का उद्घाटन किया। ये मेले 20वें राष्ट्रव्यापी रोजगार मेले के अंतर्गत आयोजित किए गए। श्री चौधरी ने कहा कि लोगों के सामूहिक प्रयासों से वर्ष 2047 से पहले ही विकसित भारत का सपना साकार किया जा सकता है। श्री सुरेश गोपी ने कहा कि रोजगार मेले राष्ट्र निर्माण के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
0: कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
0: भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट किए थे उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। नॉन फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी कैपेसिटी, कार्बन एमिशन पर रोकथाम, हर पैरामीटर पर भारत की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है।
1: श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
0: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
1: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित

0: प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने तथा प्राणियों के प्रति करुणा रखने के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के महत्व का उल्लेख किया। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान 54% से अधिक है, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक है। श्री यादव ने वनों, घास के मैदानों और आर्द्र भूमि के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया।
1: भारत ने मैंग्रोव यानी समुद्र तटों पर उगने वाले पेड़ों और वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ तटीय समुदायों की आजीविका मजबूत करने के लिए मिष्टी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत मैंग्रोव क्षेत्रों को फिर से विकसित करने, नए पौधे लगाने और स्थानीय लोगों की भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
2: लाइवलीहुड एंड इकोलॉजिकल रेजिलेंस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि ये नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की गई हैं। निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 5 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि एक एक न्यायाधीश को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त किया गया है। मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को झारखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 3 न्यायाधीशों को कर्नाटक उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि वर्तमान में विश्व के सेमीकंडक्टर डिजाइन कार्यबल का लगभग 20% हिस्सा भारत में है। श्री कृष्णन ने कहा कि सरकार ने डिजाइन प्रतिभा पर विशेष बल दिया है और लगभग 85,000 डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम जारी है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार कौशल विकास के सभी पहलुओं को प्राथमिकता देगी, जिसमें सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फोरेंसिक सामग्री, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं। नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उभरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले जाने वाला यह वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल को सहायता करना जारी रखेगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक 3,57,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक सेवा को समर्पित 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने और देश सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। इन्हीं में से एक है अग्निपथ योजना। इस विशेष श्रृंखला में आज हम अग्निपथ योजना के अंतर्गत युवाओं को मिल रहे नए अवसरों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
4: युवाओं को देश की सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की। इसके तहत सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है। अग्निवीर 4 वर्ष तक सेवा करते हैं और इस दौरान उन्हें सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और विभिन्न कौशल का अनुभव मिलता है। उत्तराखंड की सैन्य परंपरा में युवाओं की सेना में सेवा की विशेष भूमिका रही है। अग्निपथ योजना के तहत राज्य के युवा भी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष फरवरी और मार्च में चंपावत के बनबसा में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली में बड़ी

0: संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। चार वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद प्रत्येक बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सशस्त्र सेनाओं के नियमित कैडर में शामिल किए जाने का प्रावधान है। अन्य अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज और कौशल प्रमाण पत्र दिया जाता है। उत्तराखंड में सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए वर्ष 2025 में समूह गा की विभिन्न वर्दीधारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें पुलिस, अग्निशमन, कारागार, वन आबकारी और सचिवालय रक्षक जैसे पद शामिल हैं। निर्धारित शर्तों के अनुसार उन्हें आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट का प्रावधान है। संतोष थपलियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक और विज्ञान सचिव श्री एम गणेश पिल्लई ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों पर आकाशवाणी से विशेष बातचीत की है।
2: इंडिया स्पेस प्रोग्राम,
3: भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने संचार, नौवहन, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और कृषि सहित राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसरो, गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्र अभियान और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों पर काम कर रहा है।
2: प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन एंड लूनर लैंडिंग।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है और अधिकारियों से कहा है कि शरणार्थियों को निर्वासित करने से पहले ये आकलन किया जाना चाहिए कि क्या अफगानिस्तान में ऐसे लोगों को उत्पीड़न, यातना या अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का खतरा है। विशेषज्ञों ने पाकिस्तान के चिकित्सा और दंत चिकित्सा संस्थानों को अफगान छात्रों को वापस भेजने के निर्देश पर भी चिंता व्यक्त की। रिपोर्ट के अनुसार 100 अफगान छात्र, जिनमें से 20 से 40 महिलाएं शामिल हैं, इससे प्रभावित हैं। असम के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और सांस्कृतिक हस्ती जुबिन गर्ग की आज पुण्यतिथि है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 17 सितंबर से 3 दिन का जुबिन दिवस भी मनाया जा रहा है। जापान के आईची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आईची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: दरअसल पहले आकाशवाणी दिल्ली का नेशनल न्यूज सर्विस प्रोग्राम लाइन न्यूज़पिन मीडियम वेविका अचेस आकाशवाणी कारगिल का जरिन्यूत वक्सपुमेत सुसता बल्ती प्रोग्राम तरगस्कत प्रोग्राम प्रचुखन पिन अकील हुसैन प्रोग्राम प्रोड्यूसर गुलजार हुसैन।

0: ना कोई सरपंच जाओ बना ऐसे का तो दवाई रजिस्ट्रेशन चाहिए क्या ना दुनिया काम ही कासा चीज़ थी समान साम जैसे यो छे वो जैसे इन मीनिस जैसे इस्तेमाल पसे ठीक पसे कोर्स में मजा ना दस मंथ पुला मुकाबला बहुत लोप्स जरा सिंपल चाम पंजाब में साथ पे पंजाब से ठीक है और तो रजिस्ट्रेशन जरिए दो सेफ यूज़ पे दें तो मैंने मटियस मंद जाचा मैं बाजार ना मस्त मंद जाचा मैं यहाँ ची तकलीफ है डॉक्टर ला करो जरूर बरोशी ये डॉक्टर क्या चीज़ गैस माने एलर्जी में था कच्ची माने एलर्जी हो मत स्नोट पद म्यान मत मैं अंधकार पर साबर बजूंगा म्यान मत फिर जितने दिन जर से तो रंडास मान पर जरूर बरोशी जगह जाओ से खोज जाओ कोई कल सचिन से पदो इन मुन नस मान जाना का तो आप एडिक मज़े जर में जाओ उस मान जाओ के मज़े जिन दुख तो वो पाने नज़र है डॉक्टर जर पांच दिन के जाओ चौगा निशिक सोस तू तो जाना नस मान जाने तो खलमा ख़राब है चिन खलमा जिकने का तो करोड़ों का काम होता है तो मुन लम्बिया शाया आसमाने दो इन की आप पूछ के तीसरे जात समझा सरपत समझा डंडे का जाना नहीं ठीक लोचे
1: तादीन यहाँ छत्ता सवाल चुनना जो कि अति पेशेंट कुल ना मैं आगा डॉक्टर चित पेशेंट चुगो देगा ना सोस मन तंग दे डॉक्टर को समान ता सर क्या अपना खोला डोस चितंग दे किस दित से जोज रे अम्मा खो दे डोस प्रोग्राम में पच्चीस दूल ला खोए बीमारी या गाजोक शियोत ना दो फलते सोना खोला जार
0: बस नहीं नहीं तब इन नांग रांस बन में बात चाहिए उसे डॉक्टर प्लस थक चा
1: अच्छा
0: से एसएस बस ता जिन चीक सों सो बिंदु सासक लो सुबह जैसा रंग खुशी का बन बच्चा को अच्छे से चुनाव डोज पाने उसे जरूरी डोज ही मतलब पर दो इन चिक चिक समान चिक चिक है मसाल था दिया इसका तो पितौ जो जन मिलो
1: बिल्कुल
0: दे मतलब पिन दस मान पर गया 12 घंटे में दुखचा मैंने
1: अच्छा
0: 12 घंटे अच्छा दस मान पर पांच फीस पांच ना चाहिए अच्छा तो 12 घंटे अच्छा चीज क्या चीज आ रही है 24 घंटे का और यहाँ पर बस दे दुश्मन देखे टांग टांग चीन ना 24 घंटे टांग टांग मर गो घंटा सुम जुड़ा ना ये टांग दुश्मन भी क्या नहीं फास्ट ना दिया ये तो शनी वो ऐसे चंपा ना तो शनी चाहे आसमान जिस चीज़ों से दिन में 3 बार खाओ यानी कोई असर पे होते हैं सिर्फ 8 घंटा 8 से 24 8 घंटे हमको छोटे खजमा फीस फास ना चे इची हो आसमान पुखरियां यो पूरा दो डॉक्टर ने पता दे आसमान चीज़ जगह रह रहे होते हैं 2-24 घंटा लाज वाशे आसमान चीज़ चीज़ों से हफ्ते रह रहे होते वो 7 दिन काम करता है रहा खुशी का मिजाज है दोस्त वो सही बस है तरीके का जाना
1: डॉक्टर ना सलाह बस है
0: सलाह बस है
1: बख्शीस गुआना माती यंग सवाल चुन नदी इस माने बारे इन सेफ यूज़ ऑफ मेडिसिन बारे की माती सरमाने जर है ना कि ज्यादातर कि सुनसे उम्र ही नहीं है नता जवान कुल नजर है नया सुनसे लकी समान ज्यादा मजो जरे दो चीज
0: बुरा प्रेस सुनसे ना रात सा पेशेंट ने पिन यंग सुची बैठ पिन पूरा अस्पताल मारे संभाल पिन 10-15 साल दिखा मैं तो मिशन ना सुन सुलता से कब ब्लड प्रेस गिरेस परहेज बहुत ब्लड प्रेस मान पर जोर Ati bak tu mete kaç oldunuz. Son zaman tuzo yakışık korun bazarlar. Hadi gari yok. Hadi bak. Geç bir gün bırak parçası olsam. Hadi bak çak bas. Var çık sonsuz değil. Çık duğa. Çık duk şu. Ne çık bak nasıl mazan dik. Rikam da diyananla dugna bırak sonsuz. Pet bir demak olarak patayı sonsuz. Stok sonsuz. Terel sonsuz. Dan sakla. Çayana tut Osman ben başamayın. Osman ben besin olsa kız bir sonuç değil. Mazan kaçan pek son. Bir şey bir infeksiyon çanak açarsın. Bana şey 10 dini korusam. 10 dini kalmana yalnız uçak başın. Ne giden zar koşamın? Ya bırak peşer son. Dostman bu zindeki imanı zindarla dostu zar koşamın. Tam yeri hiç izlerim. Amtur. Yuh. Bırak peşer son da ana adat çağırdı o zaruru da. O da çok gandas perek dünya tamet. Adat men.
1: Adat
0: zar. Zarurat in. Zarurat. Madde ki azan mazadu. Azan zana adat çağırdı. Mazadu öte. Çutuğuna adat çağırdı. Mazadu öte. Piyak bana adat çağırdı. Mazadu öte. O bulaş ben adetim az savaş men. Rugan bulaş pes çarayı son osman pe mazadım çarayı sen son se. Yaşık mi kuşat na su açan yancamın kalma açat na su açan yancamın. Demaga bırak fatay sen de kopma thara son solucun. Sana adet son zorat son kezir. Niye? Tutu adet men de. Ya sonra şu garip zırmoz. Kuş şu garip osman pe sen de poroşun. Adet çadır mazadı kalma açat yancın mi pon açat yancın. Bizim de çoğun yancamı, kalmacık bana yan bizi kalmak için o zaman tak var bu şimdi. Tak sergâv nâng zindar lüzlüz bu. Zey das bana da resman zar bu şimdi. Ben de takan kalma bin şad. Çıta, harap şad. Sana abka karolun ka noksan çeçin. ځکه 5000 په ټیبلټ چې ځان نه کښې شي نه بلډ پرشر په چړای ما سوم می په سلامت لوس خلما سلامت لوس دپا سلامت لوس څنګه دوه عادت سپره ما سوم دی نتیګه ما جاتو کې امرس

इन अदर वर्ड्स, ये आकाशवाणी है। दोपहर के 3 बज चुके हैं। उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशात का अब आगाज होता है। इस मजलिस में आप तमाम सामिन का खैर मकदम है। उर्दू सर्विस की नशात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। आइए एक नजर डालते हैं इस मजलिस में नशो नाले प्रोग्रामों पर। दिन में 3:05 पर खबरें नशे की जाएंगी और 3:15 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम मेरी पसंद। इस प्रोग्राम में आप सुनेंगे चंद फिल्मी नगमे मेरी पसंद के। सपेर 3:30 सुबह लोकगीतों के प्रोग्राम में आज हम आपको सुनवाएंगे हिमाचली लोकगीत। शाम 4 बजे आप लुत्फानंदोज होंगे फिल्मी मौसीकी से। फिल्मी नगमों का यह प्रोग्राम जारी रहेगा 4:50 तक। शाम 4:50 पर खबरें नशे की जाएंगी और शाम 5 बजे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। सामने ये था एक मुख्तसर तारुफे से मजलिस में नशो नाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रेडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। सपेर के 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आजादाना तिजारती माहदे मुल्क के नौजवानों के लिए नए इम्कान पैदा कर रहे हैं। उन्होंने 20वें रोजगार मेले के दौरान नौजवानों में 51,000 से ज्यादा तकरारनामे तकसीम किए। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कार्बन अखराज में भारत का फीकस हिस्सा दुनिया के औसत हिस्से के निसफ से भी कम है। उन्होंने वाजे किया कि भारत G20 का ऐसा वाहिद मुल्क है जिसने COP21 समिट के दौरान किए गए वादों को वक्त से पहले पूरा किया है। मरकजी हुकूमत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DUEM के तहत ज्यादातर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 34,000 देही नौजवानों को तरबियत देगी। भारत ने अद्वियात और फॉरेंसिक सप्लाईज समेत नेपाल को 11 टन राहती साजो सामान की खेप रवाना की है। अक्वामे मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को अफगान पनाह गुजीनों को जबरी तौर पर मुल्क बदर करने से मुतालिक खबरदार किया है। माहिरीन ने भी पाकिस्तान के तिब्बी इदारों से अफगान तलबा को निकालने से मुतालिक हुक्म पर तशवीश का इजहार किया है। और मशहूर गुलकार, कंपोजर और सकाफती शख्सियत जुबीन गर्ग को उनकी पहली बरसी पर आसाम में याद किया जा रहा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20वें रोजगार मेले में हुकूमत के मुख्तलिफ महकमे में नए तकरर किए गए नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकरारनामे तकसीम किए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आजादाना तिजारती माहदों से मुल्क के नौजवानों के लिए नए मौके पैदा हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह के माहदे मुल्क के सनअतकारों के लिए नई शराकतदारियों और बाजारों की राह हमवार करते हैं और नौजवानों के लिए रोजगार के नए इम्कान पैदा करते हैं। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के नौजवानों की जहानत और उनकी सलाहियतों ने पूरी दुनिया का भरोसा जीता है। इस मौके पर अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि रोजगार मेले के जरिए रोजगार की तश्कील और तकरूरी के जायजे से जाहिर है कि सरकारी तकरूरियों में काबिल जिक्र इजाफा हुआ है, साथ ही इस अमल में ज्यादा शफाफियत आई है। उन्होंने कहा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए NDA हुकूमत ने 10 साल के दौरान तकरीबन 10,96,000 तकरर किए हैं, जबकि UPA हुकूमत के दौरान 7,22,000 तकरर हुए थे। 20वां रोजगार मेला मुल्क भर में 45 मकामात पर मुनक्किद किया गया। 9 तकरर शुदा उम्मीदवार खजाना, रेलवेज, उमूर दाखिला, सेहत और खानदानी बहबूद की वजारतों समेत हुकूमत की मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में ओहदे संभालेंगे। 20वें रोजगार मेले में तकरीबन 12,75,000 नौजवानों ने तकरारनामे हासिल किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कार्बन अखराज में भारत का फीकस हिस्सा दुनिया के औसत हिस्से के निसफ से भी कम है। आज नई दिल्ली में माहौलियात और आबोहवा के महरकात से मुस्तकबिल से मुतालिक बैन अलाक्वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए जनाब मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि कार्बन अखराज के लिए अक्सर तरक्की पजीर ममालिक को गैर मुनसिफाना तरीके से जिम्मेदार ठहराया जाता है। जनाब मोदी ने वाजे किया कि भारत G20 का ऐसा वाहिद मुल्क है जिसने पेरिस में मुनक्किदा COP21 समिट के दौरान किए गए वादों को वक्त से पहले पूरा किया है। वजीर आजम ने कहा कि गुज़िश्ता 12 साल के दौरान भारत ने माहौलियात से मुतालिक हर शोबे में गैर मामूली पेशरफ्त की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बैन अलाक्वामी शमसी इत्तेहाद, हयातियाती ईंधन के आलमी इत्तेहाद, शेयरों की नस्ल से मुतालिक बैन अलाक्वामी इत्तेहाद और मिशन लाइफ जैसी पहल के जरिए माहौलियाती तहफ्फुज़ के नए पैमाने कायम कर रहा है और बाकी दुनिया के साथ मिलकर काम कर रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत की असल तवज्जो काबिल तजदीद तवानाई पर है जो माहौलियाती तहफ्फुज में अहम रोल अदा करती है। तकरीब से खिताब करते हुए भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कुर्रे अर्ज को बचाने का नजरिया

बीटी फिल्म का ये दुगाना था मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का गाया हुआ सोनी कोमी की मौसीकी में, और प्रोग्राम की आखिरी पेशकश अप्रैल फूल फिल्म का नगमा लता मंगेशकर का गाया हुआ।

ये थी मेरी पसंद प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशियात आप सुन रहे हैं मीडियम वेव से 71 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। सुबह लोकगीतों के प्रोग्राम में आज सुनिए हिमाचली लोकगीत।

सूबाई लोक गीतों के प्रोग्राम में आप सun रहे थे हिमाचली लोक गीत फनकार थे देवराम और हमनवा। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DT फ्रीडिश पर हमारी नशियात जारी हैं।

धड़कन फिल्म का नगमा अभी आपने मोहम्मद रफी की आवाज में सुना, और ये सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में आखिरी खत फिल्म का नगमा, कैफी आजमी का लिखा हुआ, मौसीकी खयाम की।

ये फिल्मी नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। अगली पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म है अनोखी रात, मौसीकी रोशन की।

ये फिल्मी नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। अगली पेशकश शंकर हुसैन फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी का गाया हुआ। नगमा निगार कमाल अमरोही, मौसीकी खयाम की।

0: sound kule kule na pa song se cham shik sound yang nga ta galba las be janwar ri jandar chi shot ga nga ti mig na thong me tang ate string je ta ga nga tes microscope yang ta se mene thong ang me tang udo ni abadi bilkul kam cha cha spos ba se nga ta cham shi yong che yong mat na a se pa na bi sal yares nga tang basang 80-90 sali buzrugun la tiana na sa duze rendu ki snalla brega nga khalyong mallo chana odon chote daksam brega nga bresum ya jbi mene yong mendu kule kule nat pa song zin suk sarkari lut be ta hasha kal kolchas pos base nga ti sound ko kule kule chote song zin suk tana dek na chi song zin suk zaba na daksam scientist un la dia realize song zin suk ki di sarkari lut un sarkari man bilkul ode chemical fertilizer ko mana mangmo kolchas pos base chemical man un nga ti laksu sun la mana mangmo kolchas pos base sound kule kule nat pa ba zin suk ni sound kule kule nat pa ba na scientist un la yang realize song zin suk ki nga tes dun yang revive be fila yang dun uk chuk chuk yang zok kyong chus pe fila kuwa yang shet tang chuk pe fila ngate chibok sambana ngati atapun is gasuk shik snal la farming bat pin na natural tarike ka odon lang uk juk shuk pin ngata stab bar go shatu yang las bar go shatu ta ki yung mitus pe anu ngate snati future un la ngati future generation un la ngate di jing un yak me pas jak se chok ta sa
1: no sab मतलब गाते केमिकल फ्री एरिज जैसे जो गाते गलत सरकारी लुज गाते आम पूरी पने गाते जैसे सरकारी लुज जो चाना दिया नो दरे कुलिया गाते लोग चाहिए हाँ ये दस लाज बने कि नेशनल फार्मिंग तरफ गाते छे नहीं चाना दिया नो लाइफ स्टाइल या डाइवर्सिफाइंग क्रॉपिंग गाते अलग अलग फसल तांग से हाँ या ट्रेडिशनल तरीका न्यूज बस है गचुक चीज यूज मदद बने हाँ दी गति जिंग पो यंग लोग से आता पुए दे कोई दे नत पिका लुजो
0: बिल्कुल बिल्कुल मान खाचे यार इस यंग सवाल चिते से ना साहब चाना दी नेचुरल फार्मिंग पुखरा है सुना थी आता पोन इस गचुक शिका सागेत पत पिन्ना उदों लयंग रिवाय बचा दों लयंग जाक्षी उक्स जुक जुक शुचा ताकि गति साउन यंग शेत पो या साउन ही ताकत पो यंग लोग से यंग लोग चाना नेचुरल फार्मिंग ही यार ना पिलर जीवी से इंदु ना साहब दें इंसुक जीवामृत गन जीवामृत जीवामृत जर इंसुक छुई लुत पोचो से गन जीवामृत पो इंसुक जाशिक नतेस शिलांग उन लायंग क्याला जोस्ता चिगा गचु उग जुक शु से नतेस शिलांग उन नतेस बिल्कुल शिलांग उन ताकत पो बढ़ाई बसे नतेस नतेस जिंग उनका गचुक शिगा लेप चुगे तंग दो इंसुक सुंपाउ जर्शी ने यारंग मल्चिंग मल्च dang dering ati der mulch zerbana strip nakpo plastic po ting chau zendo na sap mulch po nakpo plastic po sa ting chau men ki mulch po ati jing po nanga ma jok zerindo ya lang zerna chiton shik skone jak pana tam shi bat yot na don den juk solution suk nispa ong ati ladak suk jagau nika mulching imana mana importance chi dukcha zerbana nati abo hawa khush pyo chas pos base tam shik nami yot na don gyospe gyospe sare cha chas pos base दियं सामशिक नती साउनियं गैल्वास्ट्रिनी उतना दोनी आबादी कुले कुले कम छाचिन सु चाना दोनी आबादी मेंटेन जक चुपे फिला गैल्वा जक चुपे फिला दी से अनुक बात पो क्यारिक लुशास पो मन खाचे गिन सु दे फिला मल्च पो मन जरूरी गिन सु दोना बीच अमृत जर्चिन यारा जरना बीच अमृत जर बना बीच जर इन सु यारा सोन पो जर अमृत जर बना दोन लास्ट मन चिकिन सु यारा दो नतेस लोकली तरीके का नतेस देस सोनीसमान पोचो चाहे रंग जरना सीड ट्रीटमेंट जरूर बताए साइंस यंग सीड ट्रीटमेंट चोस तंग जैसे कि गाता गाहे गाहे सोन पोतप से ना सोन को ना मन मामिक तास्पा मगर रेडी पेर में ने मामा हूँ कासा कासा दोन लाख कभी कुबार ना दियो या कभी कुबार बाल वाल छक से हो में ना रिश्ता नर्जब ना चाना उदों ला ट्रीटमेंट में फिला बीच अमृत दोन लांग अतिस लोकली तरीके का अतिस नती तरीके का ट्रीटमेंट वसे रिमो वसे चो से नी दोन अतिस इस्तेमाल बनार गलबा यों चिंसु यों क्यों और गलबा छा चिंसु तादी जरूरत पे यंग नेचुरल फार्मिंग की जरूरत पे चीज़ हों चिंसु जबना यंग यारे मामूल सा यार साहब की लाइफ स्टॉक इंटीग्रेशन पो जरे लाइफ स्टॉक पो भलंग पोंगा नेचुरल फार्मिंग यंग मन खाक चकिन मगर भलंग पॉपुलेशन पोंगा कम योद नांग दिखचिन snalla ataponi tuspenga tanga nor balang kharik jakchas pos base ngati jinguni ga logang har jinga ngata dangre lut ya chakse lut ya nori lut gangma chichik base ngata ngati jing jbi re gyotna gangma getene tsu era sap chana daksa mi tuspenga yaranga hardly mana mangmo jakkan

तोस बलंग ही जगत नोर चु जगत दून इस यरंग जिंग का तो अगर चिची का ओल चिकना जिंग दून गया ची होना हर साल पॉसिबल मचा इंसुक मायन मा इंसुक की हर साल दिया नोर बलंग है बिंखानी लुट पोगा तेस गति जिंग गंग मा लेप चुक चास्पोआ माना कावर बा मायन मा इंसुक छाना नेचुरल फार्मिंग तरीके का मन समय एना सब नेचुरल फार्मिंग पे यार छुई लुट पोचो से दिया छुई लुट पो ताकत पो जाशिक स्केते ना यार जिंग उन लतंगना लोखोर यंग कम अस कम यारी लगा जिंग का तो जिंग ना छास निस्का तंग से और दून रुग्या दियोत ना लोखोर यंग यार सिर्फा सुम जबीर गया रहा दिया छुई लुट पो करंग पूरा रिपीट चेंदुक छाना serpa sumjbi ka to dyang repeat chana atang kule kule jiuni cha nga tang nga to yang lok se yang chen su ka sa da da sa mata jeski 2025

0: 양 록세형 증축 다시.
1: डॉक्टर साहब मतलब जैसे कि 2025-26 से 20 लाख पॉपुलेशन हिंदुस्तान है मतलब जी 20 लाख हेक्टर जो सॉरी 20 लाख हेक्टर मतलब या दो ना 10 लाख हेक्टर 20 लाख फार्मर
0: कनेक्ट कर सकते
1: अच्छा ना गचुक चिया दी जो ना मतलब मैकेनिज्म बदल बजू
0: जो सिस्टम बिल्कुल बिल्कुल जो

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए करीब 1,00,000 करोड़ रुपए के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हुए हैं।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: इससे पहले नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: रेलवे ने सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशनों पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत मध्य रेलवे के मोहोल, मुंधेवाड़ी, बाले, सोलापुर, होडगी जंक्शन, होडगी ए कैबिन

0: शाहबाद और वाड़ी जंक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 से अधिक रूट किलोमीटर पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस खंड को 25 किलोवाल्ट की एक यूनिट से 25 किलोवाल्ट की दो यूनिट के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। वहीं पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण के लिए भी 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। पिछले महीने नेपाल में भीषण बाढ़ में जान माल का व्यापक नुकसान हुआ था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव में 3 बड़े पद जीते। एबीवीपी के यश डबास अध्यक्ष चुने गए, जबकि रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव बने। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन उपाध्यक्ष पद पर विजयी रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने डूसू चुनाव में एबीवीपी की जीत पर बधाई दी है। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youths in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. Speaking on the occasion,

0: एक बड़ा चैलेंज है।
1: इस डॉक्यूमेंट्री और कोलाज प्रदर्शनी के माध्यम से आपके विश्वविद्यालय ने समाज के सामने एक ऐसा आईना रखा है जिसमें जम्मू कश्मीर के युवाओं के समक्ष मौजूद चुनौतियां भी दिखाई देती और उनसे बाहर निकलने का एक संकल्प भी नजर आता है। इस डॉक्यूमेंट्री और कोलाज की पहल की मैं सराहना करता हूं और नशा मुक्त भारत अभियान की यात्रा को जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जिस तरह आप सबने व्यक्त किया है वो वास्तव में स्वागत योग्य है, अभिनंदन योग्य है।
0: इस दौरान एलजी ने आज जम्मू के माता भद्रकाली अस्थापन थलवाल में माता लल ईश्वरी कल्चरल और सकाफती सेंटर का संग बुनियाद रखा जिस पर 4.5 करोड़ रूपये लागत का तखमीना है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर चूंकि सदियों से सूफी संतों और ऋषियों की सरजमी रही है और यह मरकज यहां के रूहानी वर्षे के एक अमीन के तौर पर काम करेगा जिससे रूहानी सियाहत तहकीक फन और समाजी इतिहाद को फरोग मिलेगा। एलजी ने कहा कि आज हम अपनी तारीख के एक अहम मोड़ पर खड़े हैं जहां हमारे आबा अजदाद की दुआएं और उनकी दानाई एक एतमाद तरक्की याफ्ता और खुद कफील जम्मू कश्मीर की उमंगों के साथ हम आहंग हो रही हैं। नेशनल हेल्थ मिशन यानी एनएचएम के मुलाजमीन ने सेहत की वजीर सकीना यूतू से मुलाकात के बाद अपनी हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है। एनएचएम मुलाजमीन के एक नुमाइंदे वफद ने वजीर सेहत से मुलाकात करने के बाद दोबारा ड्यूटी पर हाजिर होने का ऐलान किया है। उन्होंने वजीर सेहत के साथ अपनी मुलाकात को इत्मीनान बख्श करार दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर रोहित जैन ने जम्मू कश्मीर में माशी सरगर्मियों को फरोग देने और माली शमूलियत को मुस्तहकम करने की जरूरत उजागर की है। उन्होंने बैंकों को हिदायत दी है कि वह बैंकों के बुनियादी ढांचे की मुनासिब दस्तियाबी यकीनी बनाने के साथ साथ कर्जों की फराहमी को बढ़ाएं और जरूरतमंद तबकों तक अपनी खिदमात तरजीही बुनियादों पर पहुंचाएं। वह श्रीनगर में यूटी में काम कर रहे अहम बैंकों के जोनल सरबराहों के साथ एक मीटिंग कर रहे थे। जस्टिस यशपाल बर्नी जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में बतौर जज तैनात किए गए हैं। मौसूफ इससे पहले जम्मू कश्मीर स्पेशल ट्रिब्यूनल जम्मू में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी तैनाती से मुतलिक मरकजी सरकार की सिफारिश की थी जिस पर अमल दरामद करते हुए आज अहकाम जारी किए गए। जम्मू कश्मीर आर्मड विंग के एडिशनल डायरेक्टर जनरल नीतीश कुमार ने आज लेथपोरा में कायम आईआरपी बटालियन का दौरा किया जहां उन्होंने नेशनल फ्लैग पूल का इफ्तिताह किया और बटालियन के मुख्तलिफ यूनिटों का मुआयना किया। उन्होंने बटालियन के अहलकारों के साथ एक दरबार भी मुनक्कद किया जिस दौरान अफसरों के मसाइल और शिकायत सुनी गई जिन पर अफसर मौसूफ ने हमदर्दाना गौर करने की यकीन दहानी भी की। उनके हमरा डीआईजी आर्मड पुलिस मकसूद उज़्ज़मा भी थे। कोयला और कानकनी के मरकजी वजीर ममलिकत सतीश चंद्र दुबे ने आज जम्मू के लोक भवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की जिस दौरान बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्वामी हरि दयानंद गिरी महाराज ने भी एलजी से मुलाकात की और उनसे अगले बरस फरवरी में तवी रिवरफ्रंट जम्मू में मुजविजा अम्बा यज्ञ के इनेकाद पर तबादला ख्याल किया। FICCI, FLO, J&K और लद्दाख के एक वफद ने भी इसके चेयरपर्सन वर्षा बंसल की कयादत में एलजी से मुलाकात की और उन्हें विमेन एम्पावरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप से मुतलिक उनकी जारी कोशिशों के बारे में जानकारी दी। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें और आकाशवाणी के दीगर प्रोग्राम आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। सोमवार 21 सितंबर से शुरू होने वाले जम्मू कश्मीर असेंबली सेशन के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। असेंबली सेशन 30 सितंबर तक जारी रहेगा जिसमें मजमूई तौर 7 दिन की कार्रवाई होगी। खानकाह मुअल्ला श्रीनगर में आज महबूब सुबहानी हजरत शेख सईद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के सिलसिले में एक रूहानी मजलिस मुनक्कद हुई जिसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर मीर वाइज मौलवी रियाज अहमद हमदानी ने हजरत शाही जीलान रहमतुल्लाह अलैह की हयाती मुबारका और उनके कारनामों पर रोशनी डाली। तकरीब पर अमीरुल मोमिनीन हजरत अली उल मुर्तजा करम अल्लाह तआला वजहु के हयात और कारनामों से मुतल्लिक लिखी गई किताब की रस्म रोनमाई भी अंजाम दी गई। ये किताब मुजम्मिल हिलाल लहरवाल ने तस्लीफ की है। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी अवामी खिदमत के अपने सफर के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। इन 25 वर्षों के सफर की कामयाबी वजीर आजम के जन सेवा से देश सेवा के जज्बे से वाजह हो जाती है। सरकार विकसित भारत 2047 का हदफ हासिल करने के लिए मुसलसल काम करती रही है। जामे तरक्की और समाजी बाइख्तियारी के नतीजे में अवामी जिंदगी में काफी बदलाव आया है। वोकल फॉर लोकल वजीर आजम की एक ऐसी मुनफरिद पहल है जिससे मकामी कारीगरों और सन्नतकारों को बाइख्तियार बनाने में मदद मिल रही है और उनकी माशी हालत बेहतर बन रही है। खुसूसी सीरीज सेवा संकल्प अभियान के तहत पेश है वोकल फॉर लोकल से मुतल्लिक ये रिपोर्ट।
2: वोकल फॉर लोकल मुल्की सतह की एक ऐसी इक्तसादी मुहिम है जिसकी रूह से

जय हिंद। फिल्मी नामों पर मबनी प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए सुनने वाले तमाम सामिन के खिदमत में मेरा खुलूस भरा आदाब। तो आइए सामिन, संगीत से भरे इस प्रोग्राम के आगाज में सुनते हैं फिल्म आन से एक गीत, जिसे गाया है अभिजीत और अनुराधा पोटवाल ने। गीतकार है समीर और संगीतकार अनु मलिक।

0: अभी आपने साया फिल्म में श्रेया घोषाल को सुना। लीजिए दोस्तों प्रोग्राम का अगला गीत हीना फिल्म से, सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाज में, बोल है रविंदर जैन के और संगीतकार भी है रविंदर जैन। पहले सुने ये छोटा सा वक्फा।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अभी आपने राजा हिंदुस्तानी फिल्म में कुमार सानू और अलका याग्निक को सुना। लीजिए दोस्तों प्रोग्राम का आखिरी गीत हीरो फिल्म से, मनहर अनुराधा पोटवाल और साथियों की आवाज में। गीतकार है अनंत बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। पहले सुने ये छोटा सा वक्फा।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों,
2: मैं यहाँ हूँ।
3: तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना था,
2: दिमाग चार्ज कर रखना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा आम हो जाएगा।
2: देखा
3: अब्बू, रुकिए मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
3: फ्री वाईफाई है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
3: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: आरबीआई कहता है
2: करो नहीं शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: अभी आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे फौजी भाइयों के लिए मीडियम वेव 684 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी कारगिल से बोल रहे हैं। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में खबरें रिले करेंगे। रिले का थोड़ी देर इंतजार कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। पश्चिमी रेलवे के उधना उकाई सोंगाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण को भी मंजूरी। 2 दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में संपन्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना में कल तेज बारिश की संभावना। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
2: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
2: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज स्टार्टअप Tier 2 और Tier 3 शहरों में है। यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
1: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोलकाता में शिक्षा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ सुकांत मजूमदार ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने विशाखापट्टनम में आयोजित 20वें रोजगार मेले में 200 नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुंबई में युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने नवनियुक्त

0: उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। एक रिपोर्ट।
1: इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि पुल के हिस्से में 91 करोड़ से अधिक रुपए की अनुमानित लागत वाले ओपन वेब गर्डर सम्मिलित होगा। 4 लेन रोड ओवर ब्रिज सड़क यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस खंड को 25 किलोवाट की एक यूनिट से 25 किलोवाट की दो यूनिट के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। वहीं सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशनों पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत मध्य रेलवे के मोहोल, मुंधेवाड़ी, बाले, सोलापुर, होटगी जंक्शन, होटगी एक कैबिन, शाहबाद और वाड़ी जंक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नागालैंड के चुमाओ के दीमा में नागा यूनाइटेड विलेज में 2 दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की।
3: यह सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था NEP 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियां और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा, पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। सम्मेलन में ये भी प्रस्ताव रखा गया कि पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री के विशेष वित्तीय पैकेज पर विचार किया जा सकता है। कोहिमा से असुनियों की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज की इस कड़ी में आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में प्रगति प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य विकास परियोजनाओं, सरकारी योजनाओं और लोगों की शिकायतों का तेजी से समाधान करना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री खुद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्यों के साथ सीधे समीक्षा करते हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रगति ने कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी की वजह से होने वाली समस्याओं को दूर करने और तेजी से फैसले लेने में मदद की है। इससे अधिकारियों में जवाबदेही की भावना भी मजबूत हुई है। इस साल फरवरी में राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि प्रधानमंत्री स्तर पर विस्तृत निगरानी के कारण 85 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और उनमें तेजी लाने में मदद मिली है।
5: हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया, हर महीने बैठा और लगातार उस काम करते करते और संबंधित राज्यों को भी बिठाया, हरेक की बारीकी से देखा और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि इस प्रगति के इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से प्रधानमंत्री के स्तर पर देखे जाने के कारण 85 लाख करोड़ रुपीज का काम को गति मिली। देश की कितनी बड़ी शक्ति को अनलॉक किया।

0: इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये हमने करके देखा है।
1: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बीबी नगर हैदराबाद की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अमिता अग्रवाल ने बताया कि प्रगति तंत्र की मदद से एम्स से जुड़े पानी और बिजली की आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने में मदद मिली।
2: हमारे पास दो मेजर इश्यूज थे, एक पावर सप्लाई का और एक वाटर सप्लाई, जो कि दोनों बहुत अहम होते हैं अस्पताल के लिए। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इंटरवेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का हेल्प से ये प्रॉब्लम दोनों धीरे धीरे करके सॉल्व हो गए।
1: प्रगति प्लेटफॉर्म सहकारी संघवाद का भी एक उदाहरण है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र के विभिन्न मंत्रालय एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम करते हैं। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति की 53 बैठकों की अध्यक्षता कर चुके हैं। आनंद कुमार के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: नेपाल की वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की।
4: I think close to 8 cargo planes have arrived.
5: अब तक लगभग 8 कार्गो विमान 130 टन राहत सामग्री देकर आ चुके हैं। 50 से अधिक भारतीय कर्मी आज भी बचाव और राहत कार्यों में मदद कर रहे हैं, खासकर उन लोगों की जान बचाने और उन्हें निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो शायद अभी भी इन पनबिजली सुरंगों में फंसे हो सकते हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार मदद के मुद्दे को बहुत सकारात्मक रूप से देख रही है।
4: The Indian government is looking at the issue of assistance very positively.
3: इस बीच भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ आपदा में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। नेपाल सरकार ने पिछले महीने विनाशकारी बाढ़ के कारणों की जांच के लिए 7 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 पद जीत लिए हैं। परिषद के यश डबास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव चुने गए। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने छात्र संघ चुनावों में परिषद की जीत पर बधाई दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू को आज पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वे लुधियाना में पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के पास उस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जब मुख्यमंत्री भगवंत मान का काफिला वहां से गुजर रहा था। श्री बिट्टू ने बताया कि भाजपा पंजाब से जुड़े मुद्दे उठाती रहेगी और जब भी जरूरत होगी मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और कार्यालयों के बाहर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन करेगी। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में कल तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मराठवाड़ा, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, कोंकण, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। टेक बॉल स्पर्धा के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की क्विंसी डिसूजा को इंडोनेशिया की सुमाया से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। क्विंसी कल कांस्य पदक मुकाबला खेलेंगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी कल सेमीफाइनल खेलेगी। सेमीफाइनल में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। एक अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर आज मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ राधा अष्टमी मनाई। उत्तर प्रदेश के बरसाना मथुरा

मथुरा, वृंदावन और ब्रज क्षेत्र के अन्य हिस्सों में श्री राधा रानी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। 2 दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में संपन्न। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ढांचे को मजीद मुस्तहकम बनाया जा सकेगा। रेल ट्रैफिक की सेफ्टी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया कवच खुदकार तहफुजाती निजाम है, जिसे मुल्क में ही तैयार किया गया है। मगरबी रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ सेक्शन पर चार लेन वाले रोड ओवर ब्रिज की तामीर को भी मंजूरी दी गई है। भारतीय रेलवे ने बस्ती रेलवे के सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के बंदोबस्त को मंजूरी दी है, जिस पर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। इसके अलावा इस डिवीजन में सिग्नलिंग के जदीद तर्ज के निजाम से रेलवे के मुतालिका सिग्नल बुनियादी ढांचे को मजीद मुस्तहकम बनाया जा सकेगा और कवच निजाम पर अमल दरामद की भी सहूलत होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन डूसू के चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने 3 बड़े ओहदों पर जीत हासिल की है। एबीवीपी के यश डवास ने सदर के ओहदे की सीट जीत ली है, जबकि रिया छाबड़ी ने सेक्रेटरी और लक्ष्य राज सिंह ने ज्वाइंट सेक्रेटरी के ओहदे पर कामयाबी हासिल की है। नायब सदर के ओहदे पर आजाद उम्मीदवार दीपांशु शौकीन कामयाब हुए हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के इंतखाबात में कामयाबी पर एबीवीपी को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि यह कामयाबी मुल्क मुकद्दम की पॉलिसी में नौजवानों के पुख्ता अकीदे की एक अलामत है। उधर वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने पैगाम में कहा है कि यह जीत मुल्क मुकद्दम के एबीवीपी के नजरिए में नौजवानों के पुख्ता एतमाद और तलबा की बहबूद के तई उसके अहद की अक्कासी करती है। इंतखाबी कमीशन कल कौमी राजधानी दिल्ली में सभी पोलिंग मराकज के मकामात पर खसूसी कैंपों का इनेकाद करेगा। दिन भर की इस मुहिम का मकसद वोटर फेहरिस्तों में नए नाम शामिल करने के साथ साथ तफसीलात में इसलाह करने, निज वोटर फेहरिस्तों में नाम शामिल किए जाने या हटाने पर एतराजात दाखिल करने में लोगों की मदद करना है। मुतल्लिका दरखास्तें वसूल करने के लिए बूथ लेवल अफसर बीएलओ नामजद पोलिंग मराकज पर मौजूद रहेंगे। नए वोटर का नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6, एतराजात दाखिल करने के लिए फॉर्म 7, जबकि वोटर फहरिस्त में किसी तरह की इसलाह करने या ताजा जानकारी शामिल करने के लिए फॉर्म 8 दाखिल किए जा सकते हैं। कौमी राजधानी में जारी मौजूदा एसआईआर अमल के बारे में मीडिया से खिताब करते हुए दिल्ली के आला चुनाव अफसर अशोक कुमार ने यह वजाहत की कि चुनाव रजिस्ट्रेशन अफसर ईआरओ अलग अलग केस की बुनियाद पर समाअत के दौरान नोटिस में बयान की गई दीगर दस्तावेजात पर भी गौर कर सकते हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं। एक ऐसा सफर जो जनसेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इसका सिलसिला जारी है। सेवा से सुशासन के नजरिए से तहरीक पाकर हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के हदफ की खातिर मुसलसल काम कर रही है। आज हम अपनी खसूसी सीरीज सेवा संकल्प अभियान में इस बारे में मालूमात फराहम करेंगे कि प्रगति प्लेटफॉर्म ने किस तरह लोगों की जिंदगी में यकसर तब्दीली पैदा की है।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2015 में प्रगति प्लेटफॉर्म का आगाज किया था, जिसका मकसद रियासतों और मरकजी वजारतों के साथ शराकत दारी में उनके बराह रास्त और बरवक्त जायजे के जरिए प्रोजेक्टों, स्कीमों और शिकायात के इजाले में तेजी लाना था। एक दहाई में प्रगति से फैसलाजाजी में तेजी आई है, बुनियादी ढांचे के अहम प्रोजेक्टों में ताखीर की वजूहात का हल निकाला गया है और जवाबदेही का एक मजबूत कल्चर पैदा हुआ है। फरवरी में इस साल राज्यसभा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वजीर आजम की सतह पर प्रोजेक्टों की तफसीली निगरानी से 85 लाख करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों में हायल रुकावटों को दूर किया गया और उनमें तेजी लाई गई।
2: हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया, हर महीने बैठा और लगातार काम करते करते और संबंधित राज्यों को भी बिठाया, हरेक की बारीकी से देखा और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि इस प्रगति के इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से प्रधानमंत्री के स्तर पर देखे जाने के कारण 85 लाख करोड़ रुपीज का काम को गति मिली। देश की कितनी बड़ी शक्ति को अनलॉक किया हमने, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये हमने करके देखा है।
1: एम्स बीबी नगर की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अमिता अग्रवाल ने उजागर किया कि किस तरह प्रगति तरीकेकार ने एम्स के लिए पानी और बिजली की सप्लाई जैसे इंतहाई अहम मामलात को हल करने में मदद की।
3: कि हमारे पास दो मेजर इश्यूज थे, एक पावर सप्लाई का और एक वाटर सप्लाई, जो कि दोनों बहुत अहम होते हैं अस्पताल के लिए, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इंटरवेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का हेल्प से ये प्रॉब्लम दोनों धीरे धीरे करके सॉल्व हो गए।
1: ये प्लेटफॉर्म मरकज रियासतों और

0: नूरबख्श,
1: नूरबख्श बिल्कुल,
0: बरुंग नूरबख्श, बरु खान का गोमा कारगिल खान के गो दो नूरबख्श खान का गोमा कारगिल न दरा यो नूरबख्श ग्रोंपा का तो यो तंगमा न दरा
1: यो दो दो
0: चिकता ने चा दरंग नूरबख्श ग्रोंपा का तो
1: नाशिस
0: छाना दो ने
1: अच्छी मंगबोर ला दे ने ने दुख पछ
0: दो मन नूरबख्श खान का रांगा तिसो ते तबलीग बिन दन इस्लाम तो कानून जान खोला इन सुपाया या चिक चिक पे मंगमोर ला दुकान पो चिक चिक करते खार ला चिक चिक यो मखार भी खार ला यो मखार भी खार लंग खारी जुक पास्ताने को देना
1: दोन गांव मांग था एर ना योस खाने चाहिए योग ना योग ना योग
0: से ना उसे दिया खापूले ना उसे आराम हो और देखा ना उसे कौन इस्लाम दोग पर तू पाया इस्लाम दोग ने क्यों से स्नान लबो दी जो पिन सो नतीजे ने नतीजे स्कूल दोग दिया आपाते स्कूल अरे ख्वास कुदे दिले मूल बगा दून स्नान ला देन अफगानिस्तान पास जाते थे ना स्कूल बनियान गांव में बहुत इंसुदे थे ना अफगानिस्तानी जा सोला हेम्बाब सिस्टिया जा सोला कास्तखार ला दोन गांव मा मान स्किन मार्चा दोन नती लुम्बाज बिकुआ छोक बिकुआ स्कूल पीउल दे खो नती कारगिल बहुत ही छोक ये सैसावा मन गलास चीचिन
1: अच्छा
0: उना
1: लुम्बाज
0: बिकुआ छोक बिकुआ स्कूल पीउल दे दरे ना मन को दिन छा मास होंगे या तो लगाती शेर बरगोन ला माने जरिन ची माने रंथाक जरिन पिन आधे का ब्रक का तेरा माने यो पिन
1: अच्छा
0: ओ दरे ना दोन सब रिजिक से छोट दे आना ची दिए माने इस गांव से सब देने का माने यो पिन सुख आधे का माने यो पिन सुख
1: बहुत
0: दूसरा हो ना
1: दिका दरन युरबल का शगरन चांजर दुपाया शरबतगोन योग पन शगरन का दुख जुर यंग दुगत तुसी शगरन का
0: तुम ना चौदह सी शगरन इंजू या चौदह सी पोलो
1: तंचा
0: ता पोलो तंचा ना तीजी शागरन पे का माल पूरा सोल लुंबा सोल जिब्यार देती ना मामोली के नतां से लालुंगा सक पस सोल जिब्यार जी का पोलो तंग मत सुकु ता पोलो तंचा ता पोलो तंग से पोलो से चा शेर बा शागरन निकां से चा दी कां से आस्तु गेरा बसेस
1: चना ना ती इलाका ला सोत जरेंदु पशु सोत पु गा का ना शुरू सोसिन गार इलाका छपा सोत दर्शाए ना जूसन ची सोर गता
2: सोत पु खेत पतिन जुना बमोचिक इस पर इन लोग सांग सांग सोत सांग सांग सोत ना ती सोत पु सो सांग सांग दे ए बाके सका युल दोगमो योजे दोगमो योजे ओ या गार बमो गारां आसीन गार मा सोत पा सांग सांग सोत ला बमी सीन पु सो देन लोया यंगो थत थथन सो मिन दुनिया से बिन दुदे बमो अरे इस पर इन तो दोना
1: सोतो इलाका जरूर
0: पा दोने सोती चोरक पो
1: चोरक पो
0: चोरक पो जून खोला खोरकान पो मान दी प्रसों से वाचरा परे सिलिक से परे लालू सेलमो परे दासी दारकोन सापा मची सोती चोक
3: मान दार सापा
1: तू गंगा सोत जरूर दो सोत जरूर
0: दो सोती मान दी के ना बिलार गुबसा मान आर बिलार गु सापा मची सोतो चोक आया बिलार गंग कोई सकार जुदे दारे फिर सकार युलबास तक चुए जा तो लालू चिल्मो का हम यंग कुछ सहायत उसका नहीं दे दरियां यो दे छाना चोक युल या चोक से लगाया आज तक पर दें नींदुम दे दे नींदुम में खोरे खान पो क्वार्स बोस तांग पिन तो सिरिंग मालिका चिकता नहीं चुआ नींदुम में खोर खाने युल पुगांग में कोई योग या
1: वैसे जो छाना अति अता मेस्पो न फर लगा अति जिले करगिल हम लोग सुखसा खोरों अति या सो दिन सुख छोटू से अनुखाजू छाना दी कना दरे कुले कुले अंगतंगा दी का अस्ताना दरे जिगजू दरे खार्ची का खाशी मलुस नल लयंते समोस की दिया नुक खचरमा गजरे डोगरा हमला सोसन अंगतंगा जिग
0: माफूस खाना जरे चिक दीदी आपको दी का नल पटावरी दुख पच्चो युद्धबाल तक खोरंग माना जब सोती मर दें दाइन चुमाना किप्टेल पकोरंग राजधानी हूँ आया दिक पटावर खाना जो चेहरे का मान दांग चिक से गाचा फ्रूट से ना याब गेदे करे नांग चिक दोने का दोने का पटावरी दुख पचु दोने का सुदुख पचु दिक ने डाक बेगारी काले खेर बचु गया ना उन्हें
1: मान दिक ना आज अली दिक दादे यस फराबी माना दिक ना ब्रख जी करे ने एक्सप्रेस थोड़ पचु दो चीन सुग यद दो ना एक आयंग स्क उनसे उनसे तुझे औरों का तो ब्रज दुख पर ब्रख कतो का दिक दर लाचिस
0: दिक मान आज चाना सोती हिस्टीज भी सिंदर दो गया ना सोती गया जी जो बोल रहे हो मतलब जो गैदी किन लो यार ना
1: अच्छा
0: गैदी के जरमाना ग्यामीस पे रहा या
1: अच्छा अच्छा
0: ग्यामी जरमाना आज चीनीस पे रहे तो पाया
1: ओ
0: ना ग्यामी गाते जर चमेल ना दारे खो ग्यागर ना ग्यानक जरते हाँ ओ यार गाता ग्यागर जरते खो ग्यानक जरते स्पेरा ग्यानक स्पेरी के इंसु गेरा आधो गाती जन दामियो मल्लो यार ना दो दरा यो दरा यो तू ओ तने सोची पूरा हिस्ट्री

0: di ka khariyot pina ngati ata mespon is kana yanta nga chi sor du ga tu si raja chi gis chos pina ju san
1: di pi khar da chas pina khes ba kana ga du magar khet pa kana bar te pe der bi hesab po khon is khet pa den de ka ga na ro ja ki goni ja ki ba na de ka sos khon shtor ka de ga mali ti ayat
0: ओ या नदी का खार वार चिचा मल
1: खार वार चिचा यत पिदे स्वरिक नरा नमा सोर खने
2: माजी पुने मन दान पंच जु माजी प मनस नल ला खाचे मगस मे तो पिंदरिन चिक ओ माजी पे कमाल या मे तो फिरमाल का तो यत गरा दे का अस्ताने माजी पे रेका मति बास ते जरे में चुका ब्रखते जरे चुक ब्रखते बार चंगे से छत पना ब्रखते छत इन तो करती सोल्ला ओ ब्रखते जरे खरमंग चो खुरंग लब गाली चोक से रहते ना
0: अच्छा खरमा चो दू बच के गति सो चो
2: बच के चक चक दिन रे तो ओ ता को गति रो ब्लॉक चो जे दे गिली ते उस का गते जे मे ता को ब्लॉक पा जे ओ या शाला चिन दे बना लदक जा पोइन ब्लॉक मक पन दे बना स्कार दे चो इन चो खर पोते जे को खर पो ब्लॉक चिक लो खर पे का स्नान लदे ने चिंग मत ना दु मारा ठक जुग बस रन ठक नि जुग तक का दिया दिने दिया तो उम्मा तक से ना मक सो मना दो फुट तक मना मना रो बयां गया चुक गया और दो बुर दो जर बच गया ना खा सगा थोन में के तो मना पो आदो यो मत गया ना अच्छी दिया किफान से सुसु जर ने दी पास सरकार ला गया माने मीसा मादाम खान सगा दे ने ना तामर चिया जेल ला तांग चा
0: अच्छा
2: ओ अदा जुगा सनाल से ते पुछा तांग से मना आकना जुगा तोंदों से पहला फूते तांग मत गया ना पुते तंग मन मन तुला ले बे बा शा जुरे में केरे पुस शा जुरे आ रुस पा बास पा
0: चुपाया ओहो ऐसा जाता चीज हो खास कर ना तंग आस कुन
2: या तेरे मिंदगा अगरा गदो आस कच्चन जरिन चेत पे ग्रों पे अदोस ना लचे मी पुत खानिन चुस कच्चन शाल बना मी पुत चाया
0: नशे जु सरे शिक्स परा ना यंती करना छांचा मिंदु इन ना खास कर तंग अति दुन मी दिस तक्सना ना सोद अलाखन यो ते छु इन ना अति जवानों ने दून जख पे मिंगना या दून लचीब आगोशात गति हुकूमत इसीब आगोशात गति नुमाइंदा ने गति चीब आगोशात जो दून जख पे मिंगना बसे
1: नुमाइंदा ने दून रिकॉर्ड उन सकस पतन रमा बस रिकॉर्ड ते जख से दितुस पेंदु सों में तो दितुस पेंदु सों में तो वेर पे रिकॉर्ड ते यम मरगो जो दे दे फोन या भी फोन इस गल चीज रे यार
0: इन ना हजली साहब दिक गति खास कर हुकूमत संग ngati di kharun ya ngati dare yare samoski di bra khone ke tu nikas takhan tourist ka to ona khato ngati sod elaka nok tarqi chata mendu ajo
2: mana mi sharta ju ni ju dian sta umal gos mana dun la sta su ko mati chuar gos de mana chuar tor chin de ni to sain de chik chim chos pa chik chos sain chuar gos chik base bar gos
0: inshallah ju ngata dang ma yot ngati zile intizamiya inna hil consul kargi lenna du chos elaka la ya gachuk दुनमिस तक्सना रियोत नरे दुन न्याम मांग्याम छु पजक सेंगति टूरिस्ट न योना दुइस नु स्ट्रोली कांगति रोजगार छ गतांग वसिला सचा हाजी अली साहब दोना हाजी मोहम्मद हुसैन साहब यंती रिथो सन वक्स न वक्स पिंग सेंगति सोद इलाके स्कोर ला यंतेस फैसा वसे मुलचस पे लेति उजु सेरे मुजरे दे अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
2: बख्शी देरी छते मेहरबानी छरे मौजूद छरे मु यंतांग नति टीम गामा मना कुम मेहरबानी बख्शी देरी छरे मौजूद आछी जान सब दंद वसेरे चुक पि शुक्रिया मेहरबानी
0: दुइन मिन युरबल तक्सोती शर्मा निकने खोंस पि त्रिसेक ध्यान यंबो नी फाइल प्रोग्रामी वक्स पाउचम्स योंग मी प्रोग्राम पुछकपा इजाजत शजदबुस यजु खुदाई फगरी
3: दरअसपयंतेस प्रोग्राम यानी नुत पिन ये फायुल मीडियम वेविका आज आकाशवाणी कारगिलिकना सरनुत